0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, एक सच्चे और स्वार्थहीन प्रेम की अभिव्यक्ति अपने को देने में व्यक्त होती है। प्रेम में अपने को किसी के लिए देना इस भांति एक वह भाषा बनती है जिसके माध्यम हम शब्दों को उच्चारित किए बिना ही अपने प्रेम करने वालों के लिए अपने दिल की भावनाओं का पिटारा खोलते हैं। प्रेम का सच्चा अर्थ किसी के लिए कोई बहुमूल्य उपहार देना मात्र ही नहीं है, बल्कि हम इसमें प्रेम करने और प्रेम पाने वाले दो व्यक्तियों के बीच आपसी मधुर संबंध की वास्तविकता को पाते हैं, जिनके व्यक्तित्व में संत पौलुस के द्वारा प्रेम के गुणों की चर्चा देखने को मिलती है, जिसे हम कुरिन्थियों के नाम उनके पहले पत्र के अध्याय 13 पद 4 से 7 में पाते हैं, जिसका अंतिम भाग हमें कहता है, प्रेम सब कुछ में विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। श्रोताओं, आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्वमय ईश्वर का महोत्सव मनाती है, जो हमारे लिए ईश्वर के अनंत प्रेम के स्रोत हैं। आइए हम आज के सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की परख करें कि पिता ईश्वर के द्वारा पुत्र में मिले प्रेम को हम किस रूप में अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में ईश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी और प्रत्यक्ष निशानी क्या है? क्या हम ईश्वर से मिले उन प्रेम की निशानियों में उनकी महिमा और प्रशंसा सदैव करने के योग्य होते हैं?
1: ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौटे पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौटे पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में त्रित्वमय ईश्वर के प्रेम की उपस्थिति को देखने, उसे पहचानने और उसका प्रत्युत्तर देने में मदद करे, जिससे हम अपने जीवन के द्वारा त्रित्वमय ईश्वर के प्रेम को दूसरों के लिए बांटने के योग्य हो सकें। श्रोताओं, निर्गमन ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए संहिता को हाथ में लिए मूसा का सीनाई पर्वत में याहवे से मिलन का जिक्र करता है, जहां ईश्वर उन्हें अपने गुणों को प्रकट करते हैं कि वे करुणामय और कृपालु, अनुकंपा और सत्य प्रतिज्ञा के ईश्वर हैं। वे देर से क्रोध करते हैं। ईश्वर के ये गुण स्वतः ही हमें अपने को ईश्वर की ओर आने हेतु प्रेरित करते हैं। श्रोताओं, मानव अपने जीवन में उन लोगों के संग संबंध स्थापित करने की चाह रखता है जो अपने स्वभाव में नम्र और दीन हैं, जो सदैव निष्ठावान बने रहते हैं। हमारी यह चाह स्वयं हमें दूसरों के प्रति करुणावान और निष्ठामय बने रहने की चुनौती प्रस्तुत करती है। अतः हम में व्याप्त ईश्वरीय गुणों का आपसी आदान प्रदान हमें या तो किसी व्यक्ति के निकट लाता या हमें किसी से दूर कर देता है। इस भांति देखा जाए तो हमारे संबंधों की शुरुआत हमारे लिए हमारे अच्छे आचार विचार और सुंदर व्यवहार के कारण होती है। हम अपने में जो सोचते कहते और करते हैं वही दूसरों को हमारी ओर आकर्षित करता है। श्रोताओं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ इस विषय वस्तु में और गहराई से प्रकाश डालता और हमें अपने जीवन में पूर्ण बनने का आह्वान करता है। हमारे लिए एकता, शांति और आपसी भाईचारे की भावना अर्थात प्रेम में बने रहना, जहां हमारा किसी से तनाव और तकरार नहीं होता, जिसके कारण हम अपने जीवन में शांति का एहसास करते हैं, हम में परिपूर्ण जीवन की अनुभूति लाती है। और यही हर मानव के हृदय की एक विशेष चाह है, जहां हम में से हर कोई सदैव शांति और एकता में बने रहने की कामना करता है। मानव के जीवन में यह एकता और शांति किसी भी कीमत पर किसी के द्वारा नहीं खरीदी जा सकती है। वहीं वर्तमान परिस्थिति में हम कितने ही धनवान और समृद्ध व्यक्तियों को देखते हैं जो अपने जीवन में सारी चीजों के होते हुए भी अपने हृदय की गहराई में बेचैनी और शांति का अनुभव करते हैं। उन्हें जीवन जीने का सुकून प्राप्त नहीं होता है। श्रोताओं, यह हमें आज के सुसमाचार की बातों को समझने में मदद करता है, जिसमें हमने पिता ईश्वर के द्वारा अपने पुत्र को दुनिया के लिए भेजे जाने की बात सुनी, जिससे हमारा सर्वनाश ना हो बल्कि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। पिता ईश्वर स्वयं अपने बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेजते हैं। वे उन्हें हमें देते हैं क्योंकि वे हम में से हर एक जन को अतुल्य प्रेम करते हैं। पिता के इस दान में हम उनकी मुक्ति योजना के रहस्य को पाते हैं, अर्थात सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु से बचाने की उनकी चाह। पिता ईश्वर की इस मुक्ति योजना में हम त्रित्वमय ईश्वर की एकता, प्रेम और आपसी सहयोग को पाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हम अपने प्रेम करने वालों के लिए अपने रोज दिन के जीवन में करते हैं। श्रोताओं, दुनिया में आने के द्वारा यीशु अपनी शिक्षा और अपने कार्यों के माध्यम हमारे लिए अपने पिता के प्रेम को व्यक्त करते हैं, विशेषकर इस रहस्य को कि वे पिता के मुक्तिदाता परम प्रिय पुत्र हैं जो पवित्र आत्मा की शक्ति में पिता के कार्यों को पूरा करते हैं। इस भांति वे हमें अपने ऊपर विश्वास करने को कहते हैं, जो मुझमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। सुसमाचार हमारे लिए यीशु ख्रिस्त में विश्वास करने के कारण मुक्ति के असंख्य कार्यों, विशेषकर अंधों, लंगड़ों, बहरों, कई तरह की बीमारियों, कोढ़ियों, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्तियों की चंगाई और यहाँ तक कि मृत्यु से जीवन प्राप्ति की चर्चा करता है। श्रोताओं, आज हमें दुनिया के उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करने का आह्वान किया जाता है, जो हमारे कारण दुख उठाते, क्रूस पर मर जाते और मृतकों में से जी उठकर आज भी हमारे बीच विराजमान है। अपनी शिक्षा और कार्यों के माध्यम उन्होंने हमारे लिए पिता के प्रेम का साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिससे हम उनमें विश्वास करें। यदि हम उन पर विश्वास करते और उनके शिक्षा के अनुरूप जीवन यापन करते तो हम अपनी ओर से उन्हें अपना प्रेम दिखलाते हैं और उस प्रेम की अभिव्यक्ति के कारण हम अनंत जीवन के भागीदार होते हैं। आइए हम ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को अपने दैनिक जीवन के छोटे छोटे नेक कार्यों में व्यक्त करें, जैसे कि स्वयं यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए किया। हमारा ऐसा करना हमें त्रित्वमय ईश्वर के प्रेम तथा आशीष वरदानों से पोषित करेगा और हम अपने जीवन में ईश्वरीय शांति को सदैव अनुभव करेंगे, जिसकी कामना हम सभी करते हैं, क्योंकि उसी शांति और एकता में हम अपने मानवीय जीवन की परिपूर्णता का एहसास करते हैं।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने आज शनिवार 30 मई को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में चेंतेसिमुस आनुस प्रो पोंटिफिस संस्थान के करीब 400 सदस्यों से मुलाकात की। उनका अभिवादन कर संत पापा ने आज के समाज में कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत की अहमियत पर जोर देने के लिए हाल ही में प्रकाशित विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास को याद किया। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा विषय है जो खासकर मेरे दिल के करीब है, क्योंकि यह दुनिया में कलीसिया के मिशन का एक जरूरी हिस्सा है। इसलिए विश्व पत्र संत पापा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को देता है। सबसे पहले आम मानवता पर सोच। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां युद्ध और बढ़ता हुआ ध्रुवीकरण है, साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक बंटवारा भी है। फिर भी इस नाजुकता के बीच हमें उम्मीद जगी है। भले ही बंटवारा बढ़ता हुआ लगे, लेकिन एक आम बात सामने आती है जो बिना किसी शक के हम सभी को जोड़ती है, हमारी आम मानवता। मुश्किल समय में इंसानियत को एक बुनियादी सवाल पर फिर से सोचना पड़ता है। एक इंसानी समुदाय के तौर पर किस दिशा में जाना है? संत पापा बताते हैं कि यह एक जरूरी सवाल है। ये सवाल इंसानियत की सच की खोज का साफ सबूत है और कुछ और पाने की चाहत, ईश्वर के लिए प्यास और मकसद की एक पक्की भावना को जन्म देते हैं। संत पापा आगे कहते हैं कि इंसान के दिल में आज़ादी की चाहत भी होती है, जिसे जो चाहे वो करने की काबिलियत या पूरी तरह से आज़ादी के तौर पर नहीं, बल्कि रिश्तों से जुड़ा पहलू, खुद को देना और दूसरों के लिए खुलापन के तौर पर समझा जाता है। संत पापा इस बात पर जोर देते हैं कि इस तरह की आज़ादी संत अगुस्टीन के बताए गए सिटी ऑफ गॉड की याद दिलाती है। खुद को देने की हद तक ईश्वर से प्यार और रिश्तों को बढ़ाने पर आधारित यह प्यार की सभ्यता बनाना सच में मुमकिन बनाती है। संत पापा अंत में हिम्मत देते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद हमें निराशा में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि छोटी और पक्की वफादारी को लागू करके और हर इंसान की आम इंसानियत को पहचानने और उसकी कद्र करने वाली सच्चाई पर आधारित बातचीत करके इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ एक दीवार बनानी चाहिए। और संत पापा लियो 14वें और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच शुक्रवार दोपहर को विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास के प्रकाशन के मौके पर फोन पर बातें हुई। वाटिकन प्रेस ऑफिस के एक बयान अनुसार दोनों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नैतिक नजरिए से और इंसानी सोच के साथ विकसित करने की अहमियत पर चर्चा हुई। बातचीत में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी फायदे के सवालों पर भी बातें हुई। और संत पापा लियो 14वें ने शनिवार को वाटिकन के कंसिस्ट्री हॉल में मानसिक स्वास्थ्य पर शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के प्रतिभागियों से मुलाकात की, जो इस समय की सबसे जरूरी और अहम चुनौतियों में से एक पर आधारित सभा में भाग लेने आए हैं, जिसका शीर्षक है, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी के बीच रिश्ता। अपने भाषण में संत पापा लियो ने लैटिन अमेरिका के लिए अपने प्यार को याद किया और पारंपरिक हाथ से बने कपड़ों की तस्वीर से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अपने कई धागों और चटकीले रंगों के साथ ये कपड़े दिखाते हैं कि पैटर्न बनाने के लिए कोई एक धागा काफी नहीं है। हर धागा और हर रंग का मतलब सिर्फ एक बड़ी टेपेस्ट्री में ही मिलता है। संत पापा ने कहा कि शिक्षा का मकसद खुद को अलग थलग लोगों को बनाने के तौर पर नहीं, बल्कि मेलजोल बढ़ाने की कला के तौर पर फिर से खोजना है। संत पापा ने कहा कि कई युवाओं के पास सबसे आधुनिक साधन है, फिर भी वे अपनी जिंदगी उम्मीदों और प्यार और यहाँ तक कि तकलीफों को भी मतलब देने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे हालात मानसिक कमजोरी के रूप को दिखाते हैं, खासकर ऐसी दुनिया में जो उन्हें कार्य और बहुत ज्यादा प्रतियोगिता की ओर धकेलती है, जिससे चिंता, फेल होने का डर और भटकाव पैदा होता है। जब इंसान मतलब ढूंढ पाते हैं तो वे पूरी तरह से जी सकते हैं और अंदर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। जब किसी इंसान को पता चलता है कि उसकी जिंदगी की कोई कीमत है और उसे प्यार किया जाता है,
उसका इंतजार किया जाता है और दुनिया में उसे एक मिशन के लिए बुलाया गया है, तो उम्मीद फिर से पैदा होती है। संत पापा ने कहा कि युवाओं को शांति, सोच विचार, सवाल पूछने की काबिलियत, रिश्तों की गहराई और आगे बढ़ने के लिए खुलेपन को फिर से खोजने में मदद करने की जरूरत है। और संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत पापा पॉल सिस्टम सभागार में कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण के 4,500 सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा ने उनका अभिवादन करते हुए कहा कि आज के समाज में बढ़ते सेकुलराइजेशन को देखते हुए हमारे अस्तित्व को नया करने का मतलब है अपने अंदर प्यार करने की एक नई काबिलियत को फिर से जगाना, एक ऐसा दान जो खालीपन और अकेलेपन की भावना से परेशान लोगों की ओर कृपा की धारा की तरह उमड़ता और बहता है, एक ऐसा दान जो आत्म स्वीकृति की इच्छा की चाहत से भटकता नहीं है, बल्कि यह पवित्र आत्मा से प्रेरित है, जो ईश्वर को अब एक साधारण विचार नहीं बल्कि पिता होने का असली और पक्का अभिव्यक्ति बनाता है। और संत पापा लियो आज रोम के समय अनुसार शाम 7 बजे माँ मरियम को समर्पित महीने के अंत में वाटिकन उद्यान स्थित लूर्द की माँ मरियम को समर्पित गुफा के समक्ष पवित्र रोजरी माला के पाठ की अध्यक्षता करेंगे। रोजरी माला विनती का हर भेद युद्ध से प्रभावित लोगों के प्रति समर्पित रहेगा और इसके दौरान बिछड़े हुए परिवारों से लेकर मेडिकल कर्मचारियों, राहत कर्मियों और स्वयंसेवकों के लिए भी प्रार्थना की जाएगी। विश्व के सभी लोगों और सभी पुण्य स्थलों को रोजरी की प्रार्थना में संत पापा लियो के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, एक सच्चे और स्वार्थहीन प्रेम की अभिव्यक्ति अपने को देने में व्यक्त होती है। प्रेम में अपने को किसी के लिए देना इस भांति एक वह भाषा बनती है जिसके माध्यम हम शब्दों को उच्चारित किए बिना ही अपने प्रेम करने वालों के लिए अपने दिल की भावनाओं का पिटारा खोलते हैं। प्रेम का सच्चा अर्थ किसी के लिए कोई बहुमूल्य उपहार देना मात्र ही नहीं है, बल्कि हम इसमें प्रेम करने और प्रेम पाने वाले दो व्यक्तियों के बीच आपसी मधुर संबंध की वास्तविकता को पाते हैं, जिनके व्यक्तित्व में संत पौलुस के द्वारा प्रेम के गुणों की चर्चा देखने को मिलती है, जिसे हम कुरिन्थियों के नाम उनके पहले पत्र के अध्याय 13 पद 4 से 7 में पाते हैं, जिसका अंतिम भाग हमें कहता है, प्रेम सब कुछ में विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। श्रोताओं, आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्वमय ईश्वर का महोत्सव मनाती है, जो हमारे लिए ईश्वर के अनंत प्रेम के स्रोत हैं। आइए हम आज के सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की परख करें कि पिता ईश्वर के द्वारा पुत्र में मिले प्रेम को हम किस रूप में अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में ईश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी और प्रत्यक्ष निशानी क्या है? क्या हम ईश्वर से मिले उन प्रेम की निशानियों में उनकी महिमा और प्रशंसा सदैव करने के योग्य होते हैं?
1: ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौटे पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौटे पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में त्रित्वमय ईश्वर के प्रेम की उपस्थिति को देखने, उसे पहचानने और उसका प्रत्युत्तर देने में मदद करे, जिससे हम अपने जीवन के द्वारा त्रित्वमय ईश्वर के प्रेम को दूसरों के लिए बांटने के योग्य हो सकें। श्रोताओं, निर्गमन ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए संहिता को हाथ में लिए मूसा का सीनाई पर्वत में याहवे से मिलन का जिक्र करता है, जहां ईश्वर उन्हें अपने गुणों को प्रकट करते हैं कि वे करुणामय और कृपालु, अनुकंपा और सत्य प्रतिज्ञा के ईश्वर हैं। वे देर से क्रोध करते हैं। ईश्वर के ये गुण स्वतः ही हमें अपने को ईश्वर की ओर आने हेतु प्रेरित करते हैं। श्रोताओं, मानव अपने जीवन में उन लोगों के संग संबंध स्थापित करने की चाह रखता है जो अपने स्वभाव में नम्र और दीन हैं, जो सदैव निष्ठावान बने रहते हैं। हमारी यह चाह स्वयं हमें दूसरों के प्रति करुणावान और निष्ठामय बने रहने की चुनौती प्रस्तुत करती है। अतः हम में व्याप्त ईश्वरीय गुणों का आपसी आदान प्रदान हमें या तो किसी व्यक्ति के निकट लाता या हमें किसी से दूर कर देता है। इस भांति देखा जाए तो हमारे संबंधों की शुरुआत हमारे लिए हमारे अच्छे आचार विचार और सुंदर व्यवहार के कारण होती है। हम अपने में जो सोचते कहते और करते हैं वही दूसरों को हमारी ओर आकर्षित करता है। श्रोताओं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ इस विषय वस्तु में और गहराई से प्रकाश डालता और हमें अपने जीवन में पूर्ण बनने का आह्वान करता है। हमारे लिए एकता, शांति और आपसी भाईचारे की भावना अर्थात प्रेम में बने रहना, जहां हमारा किसी से तनाव और तकरार नहीं होता, जिसके कारण हम अपने जीवन में शांति का एहसास करते हैं, हम में परिपूर्ण जीवन की अनुभूति लाती है। और यही हर मानव के हृदय की एक विशेष चाह है, जहां हम में से हर कोई सदैव शांति और एकता में बने रहने की कामना करता है। मानव के जीवन में यह एकता और शांति किसी भी कीमत पर किसी के द्वारा नहीं खरीदी जा सकती है। वहीं वर्तमान परिस्थिति में हम कितने ही धनवान और समृद्ध व्यक्तियों को देखते हैं जो अपने जीवन में सारी चीजों के होते हुए भी अपने हृदय की गहराई में बेचैनी और शांति का अनुभव करते हैं। उन्हें जीवन जीने का सुकून प्राप्त नहीं होता है। श्रोताओं, यह हमें आज के सुसमाचार की बातों को समझने में मदद करता है, जिसमें हमने पिता ईश्वर के द्वारा अपने पुत्र को दुनिया के लिए भेजे जाने की बात सुनी, जिससे हमारा सर्वनाश ना हो बल्कि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। पिता ईश्वर स्वयं अपने बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेजते हैं। वे उन्हें हमें देते हैं क्योंकि वे हम में से हर एक जन को अतुल्य प्रेम करते हैं। पिता के इस दान में हम उनकी मुक्ति योजना के रहस्य को पाते हैं, अर्थात सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु से बचाने की उनकी चाह। पिता ईश्वर की इस मुक्ति योजना में हम त्रित्वमय ईश्वर की एकता, प्रेम और आपसी सहयोग को पाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हम अपने प्रेम करने वालों के लिए अपने रोज दिन के जीवन में करते हैं। श्रोताओ, दुनिया में आने के द्वारा यीशु अपनी शिक्षा और अपने कार्यों के माध्यम हमारे लिए अपने पिता के प्रेम को व्यक्त करते हैं, विशेषकर इस रहस्य को कि वे पिता के मुक्तिदाता परम प्रिय पुत्र हैं जो पवित्र आत्मा की शक्ति में पिता के कार्यों को पूरा करते हैं। इस भांति वे हमें अपने ऊपर विश्वास करने को कहते हैं, जो मुझमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। सुसमाचार हमारे लिए यीशु ख्रिस्त में विश्वास करने के कारण मुक्ति के असंख्य कार्यों, विशेषकर अंधों, लंगड़ों, बहरों, कई तरह की बीमारियों, कोढ़ियों, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्तियों की चंगाई और यहाँ तक कि मृत्यु से जीवन प्राप्ति की चर्चा करता है। श्रोताओं, आज हमें दुनिया के उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करने का आह्वान किया जाता है, जो हमारे कारण दुख उठाते, क्रूस पर मर जाते और मृतकों में से जी उठकर आज भी हमारे बीच विराजमान हैं। अपनी शिक्षा और कार्यों के माध्यम उन्होंने हमारे लिए पिता के प्रेम का साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिससे हम उनमें विश्वास करें। यदि हम उन पर विश्वास करते और उनके शिक्षा के अनुरूप जीवन यापन करते तो हम अपनी ओर से उन्हें अपना प्रेम दिखलाते हैं और उस प्रेम की अभिव्यक्ति के कारण हम अनंत जीवन के भागीदार होते हैं। आइए हम ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को अपने दैनिक जीवन के छोटे छोटे नेक कार्यों में व्यक्त करें, जैसे कि स्वयं यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए किया। हमारा ऐसा करना हमें त्रित्वमय ईश्वर के प्रेम तथा आशीष वरदानों से पोषित करेगा और हम अपने जीवन में ईश्वरीय शांति को सदैव अनुभव करेंगे, जिसकी कामना हम सभी करते हैं, क्योंकि उसी शांति और एकता में हम अपने मानवीय जीवन की परिपूर्णता का एहसास करते हैं।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने आज शनिवार 30 मई को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में चेंतेसिमुस आनुस प्रो पोंटिफिस संस्थान के करीब 400 सदस्यों से मुलाकात की। उनका अभिवादन कर संत पापा ने आज के समाज में कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत की अहमियत पर जोर देने के लिए हाल ही में प्रकाशित विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास को याद किया। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा विषय है जो खासकर मेरे दिल के करीब है, क्योंकि यह दुनिया में कलीसिया के मिशन का एक जरूरी हिस्सा है। इसलिए विश्व पत्र संत पापा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को देता है। सबसे पहले आम मानवता पर सोच। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां युद्ध और बढ़ता हुआ ध्रुवीकरण है, साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक बंटवारा भी है। फिर भी इस नाजुकता के बीच हमें उम्मीद जगी है। भले ही बंटवारा बढ़ता हुआ लगे, लेकिन एक आम बात सामने आती है जो बिना किसी शक के हम सभी को जोड़ती है, हमारी आम मानवता। मुश्किल समय में इंसानियत को एक बुनियादी सवाल पर फिर से सोचना पड़ता है। एक इंसानी समुदाय के तौर पर किस दिशा में जाना है? संत पापा बताते हैं कि यह एक जरूरी सवाल है। ये सवाल इंसानियत की सच की खोज का साफ सबूत है और कुछ और पाने की चाहत, ईश्वर के लिए प्यास और मकसद की एक पक्की भावना को जन्म देते हैं। संत पापा आगे कहते हैं कि इंसान के दिल में आज़ादी की चाहत भी होती है, जिसे जो चाहे वो करने की काबिलियत या पूरी तरह से आज़ादी के तौर पर नहीं, बल्कि रिश्तों से जुड़ा पहलू, खुद को देना और दूसरों के लिए खुलापन के तौर पर समझा जाता है। संत पापा इस बात पर जोर देते हैं कि इस तरह की आज़ादी संत अगुस्टीन के बताए गए सिटी ऑफ गॉड की याद दिलाती है। खुद को देने की हद तक ईश्वर से प्यार और रिश्तों को बढ़ाने पर आधारित यह प्यार की सभ्यता बनाना सच में मुमकिन बनाती है। संत पापा अंत में हिम्मत देते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद हमें निराशा में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि छोटी और पक्की वफादारी को लागू करके और हर इंसान की आम इंसानियत को पहचानने और उसकी कद्र करने वाली सच्चाई पर आधारित बातचीत करके इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ एक दीवार बनानी चाहिए। और संत पापा लियो 14वें और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच शुक्रवार दोपहर को विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास के प्रकाशन के मौके पर फोन पर बातें हुई। वाटिकन प्रेस ऑफिस के एक बयान अनुसार दोनों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नैतिक नजरिए से और इंसानी सोच के साथ विकसित करने की अहमियत पर चर्चा हुई। बातचीत में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी फायदे के सवालों पर भी बातें हुई। और संत पापा लियो 14वें ने शनिवार को वाटिकन के कंसिस्ट्री हॉल में मानसिक स्वास्थ्य पर शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के प्रतिभागियों से मुलाकात की, जो इस समय की सबसे जरूरी और अहम चुनौतियों में से एक पर आधारित सभा में भाग लेने आए हैं, जिसका शीर्षक है, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी के बीच रिश्ता। अपने भाषण में संत पापा लियो ने लैटिन अमेरिका के लिए अपने प्यार को याद किया और पारंपरिक हाथ से बने कपड़ों की तस्वीर से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अपने कई धागों और चटकीले रंगों के साथ ये कपड़े दिखाते हैं कि पैटर्न बनाने के लिए कोई एक धागा काफी नहीं है। हर धागा और हर रंग का मतलब सिर्फ एक बड़ी टेपेस्ट्री में ही मिलता है। संत पापा ने कहा कि शिक्षा का मकसद खुद को अलग थलग लोगों को बनाने के तौर पर नहीं, बल्कि मेलजोल बढ़ाने की कला के तौर पर फिर से खोजना है। संत पापा ने कहा कि कई युवाओं के पास सबसे आधुनिक साधन है, फिर भी वे अपनी जिंदगी उम्मीदों और प्यार और यहाँ तक कि तकलीफों को भी मतलब देने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे हालात मानसिक कमजोरी के रूप को दिखाते हैं, खासकर ऐसी दुनिया में जो उन्हें कार्य और बहुत ज्यादा प्रतियोगिता की ओर धकेलती है, जिससे चिंता, फेल होने का डर और भटकाव पैदा होता है। जब इंसान मतलब ढूंढ पाते हैं तो वे पूरी तरह से जी सकते हैं और अंदर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। जब किसी इंसान को पता चलता है कि उसकी जिंदगी की कोई कीमत है और उसे प्यार किया जाता है,
उसका इंतजार किया जाता है और दुनिया में उसे एक मिशन के लिए बुलाया गया है, तो उम्मीद फिर से पैदा होती है। संत पापा ने कहा कि युवाओं को शांति, सोच विचार, सवाल पूछने की काबिलियत, रिश्तों की गहराई और आगे बढ़ने के लिए खुलेपन को फिर से खोजने में मदद करने की जरूरत है। और संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत पापा पॉल षष्ठम सभागार में कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण के 4,500 सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा ने उनका अभिवादन करते हुए कहा कि आज के समाज में बढ़ते सेकुलराइजेशन को देखते हुए हमारे अस्तित्व को नया करने का मतलब है अपने अंदर प्यार करने की एक नई काबिलियत को फिर से जगाना, एक ऐसा दान जो खालीपन और अकेलेपन की भावना से परेशान लोगों की ओर कृपा की धारा की तरह उमड़ता और बहता है, एक ऐसा दान जो आत्म स्वीकृति की इच्छा की चाहत से भटकता नहीं है, बल्कि यह पवित्र आत्मा से प्रेरित है, जो ईश्वर को अब एक साधारण विचार नहीं बल्कि पिता होने का असली और पक्का अभिव्यक्ति बनाता है। और संत पापा लियो आज रोम के समय अनुसार शाम 7 बजे माँ मरियम को समर्पित महीने के अंत में वाटिकन उद्यान स्थित लूर्द की माँ मरियम को समर्पित गुफा के समक्ष पवित्र रोजरी माला के पाठ की अध्यक्षता करेंगे। रोजरी माला विनती का हर भेद युद्ध से प्रभावित लोगों के प्रति समर्पित रहेगा और इसके दौरान बिछड़े हुए परिवारों से लेकर मेडिकल कर्मचारियों, राहत कर्मियों और स्वयं सेवकों के लिए भी प्रार्थना की जाएगी। विश्व के सभी लोगों और सभी पुण्य स्थलों को रोजरी की प्रार्थना में संत पापा लियो के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: क्रूस का चिन्ह,
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
0: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
3: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है।
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव
0: के
1: लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे

0: अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
1: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके, आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत लोक धर्म परिवार एवं जीवन के लिए गठित परम धम पीठ विभाग पर संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। टाइबर नदी के किनारे एक छोटी पहाड़ी पर बसा वैटिकन सिटी न केवल दुनिया का सबसे छोटा देश होने के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि अपने अंदर क्रिस्तीय धर्म के 2000 से अधिक वर्षों पुराने इतिहास संजो कर रखा है, जो ख्रिस्तियों सहित उन सभी लोगों को आकर्षित करता है जो कला, संस्कृति और शांति प्रिय हैं। यहाँ सालों भर तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इसके सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वैटिकन में कई विभाग हैं। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम वैटिकन के लोक धर्म परिवार और जीवन के लिए गठित परम धम पीठ विभाग पर चर्चा करेंगे। हर परिस्थिति, संस्कृति और जगह के पुरुषों एवं महिलाओं को अपनाने की इच्छा ने 2016 में पोप फ्रांसिस को वैटिकन के अंदर एक नया विभाग स्थापित करने हेतु प्रेरित किया, जिसमें लोक धर्मियों के लिए परम धम पीठ समिति और परिवार के लिए परम धम पीठ समिति को एक साथ जोड़ा गया। पोप फ्रांसिस का कहना था कि इसकी प्रवीणता कई लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी है और यही इससे एक खास विभाग बनाती है। विभाग का नेतृत्व कार्डिनल केविन जोसेफ फरेल की अध्यक्षता में सचिव धर्मदश दारियो जेरवासी और ग्लायसोन दी पाओला साउजा के द्वारा किया जाता है। पोप फ्रांसिस ने अगस्त 2016 में मोतु प्रोप्रियो सेदुला मातिर के साथ विभाग की स्थापना की। इसी के साथ लोक धर्मी परिवार और जीवन से जुड़ी जिम्मेदारियों को एक साथ रखा गया। अपने युवा अनुभाग के साथ संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के आदेश पर लोक धर्मियों के लिए गठित परम धम पीठ समिति, जो अब विभाग बन चुका है, 1985 से स्थानीय समितियों के साथ मिलकर विश्व युवा दिवस घोषित करने में शामिल रही है। जून 1988 में पोप ने रोमे परमाध्यक्ष कार्यालय पर प्रेरित संविधान पास्तोर बोनस के साथ इसकी जिम्मेदारियों एवं संरचना को बताया। परिवार के लिए परमधम पीठ परिषद, जो अब एक विभाग है, परिवार वर्ष के रूप में 1984 से परिवारों की विश्व बैठक के आयोजन के लिए जिम्मेदार रही है, जिसकी शुरुआत रोम में आयोजित पहली बैठक से हुई थी। प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम के अनुसार लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित विभाग लोक धर्मियों की प्रेरिताएं, युवाओं और परिवारों की देखभाल तथा ईश्वर की योजना अनुसार बुजुर्गों और जीवन को बढ़ावा देने एवं बचाने के लिए जिम्मेदार है। यह लोक धर्मियों के काम एवं मिशन को बढ़ावा देता है, चाहे वे अकेले हों या संघ में, चाहे वे कलीसिया के हों या कलीसिया से बाहर। विभाग युवाओं के लिए कलीसिया की चिंता जाहिर करती है और दुनिया की चुनौतियों के बीच उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है। यह पोप की युवा प्रेरिता की पहल को सहयोग करती है और धर्माध्यक्ष सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय युवा संघ और आंदोलन की सेवा करती है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सभा आयोजित करती है। विभाग कलीसिया एवं समाज में महिलाओं और पुरुषों की पहचान तथा मिशन पर कलीसिया के सोच विचार में योगदान देती है। इसके लिए वह उनकी भागीदारी को बढ़ावा देती है, महिलाओं और पुरुषों की विशेषताओं को अहमियत देती और कलीसिया में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। यह बपतिस्मा के आधार पर लोक धर्मियों और पुरोहितों के बीच सहयोग से जुड़े मामलों का अध्ययन करती है, ताकि दोनों में कलीसिया के जीवन और मिशन के लिए उनकी साझा जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता बढ़ाए। इसका काम है स्थानीय कलीसियाओं की जरूरतों के हिसाब से लोक धर्मियों को सौंपी जाने वाली नई प्रेरिताएं एवं कलीसिया के कार्यालय बनाने के बारे में धर्माध्यक्ष सम्मेलन के प्रस्तावों को जांच और मंजूरी देना। विभाग विश्वासियों के समुदाय और कलीसियाई आंदोलनों के जीवन और विकास में मदद करती है। यह कलीसिया के धर्म सिद्धांत के शिक्षाओं के आधार पर विवाह एवं परिवार की प्रेरित देखभाल को बढ़ावा देता है। यह कलीसिया और समाज, अर्थव्यवस्था एवं राजनीति में पति पत्नी और परिवारों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय सभा एवं कार्यक्रमों को भी यह विभाग बढ़ावा देता है। सुसमाचार प्रचार एवं संस्कृति तथा शिक्षा के विभाग के साथ मिलकर यह परिवारों में विश्वास को आगे बढ़ाने का काम करती है और माता पिता को अपने दैनिक जीवन में विश्वास में सुदृढ़ जीवन जीने के लिए बढ़ावा देती है। विशेषज्ञों की मदद से यह विवाह एवं परिवार की मुश्किलों के कारणों का अध्ययन एवं खोज करती है। इसका काम तलाकशुदा एवं दोबारा शादी करने वाले जोड़ों और कुछ संस्कृतियों में एक से ज्यादा शादी करने वाले लोगों के लिए प्रेरित देखभाल के मॉडल इकट्ठा करने और उसे प्रस्तावित करना है। जिम्मेदारी पूर्वक बच्चे पैदा करने और गर्भधारण से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक मानव जीवन की सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन करती है, जिसमें विकास के अलग अलग चरणों में मानव की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। यह उन संगठनों एवं संघों को बढ़ावा देती है जो परिवारों और लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक जीवन के वरदान का स्वागत करने और उसकी रक्षा करने में मदद करते हैं, खासकर गर्भपात का सहारा लेने से रोकने में। यह अलग अलग धार्मिक विषयों एवं दूसरे संबंधित विज्ञान के साथ बातचीत करके मानव जीवन से जुड़े मुख्य जैव चिकित्सा और कानूनी मुद्दों का अध्ययन करती है। यह विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के साथ सलाह मशविरा करके मानव जीवन और मानव की सच्चाई के बारे में नए सिद्धांत की जांच करती है। अंत में विभाग की सच्ची छवि पोप फ्रांसिस के उस बात में प्रकट होती है, जिसको उन्होंने फरवरी 2023 में विभाग द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कहा था। मैं चाहता हूं कि हम सभी के दिल और दिमाग में कलीसिया का एक सुंदर दृष्टिकोण हो, एक ऐसी कलीसिया जो मिशन के लिए प्रयासरत हो, जहां ताकतें एकजुट हों और हम सुसमाचार प्रचार के लिए एक साथ चलें, एक ऐसी कलीसिया जिसमें हमें जोड़ने वाला बपतिस्मा प्राप्त ख्रिस्ते होना, हमारा यीशु से जुड़ा होना, जहां लोग धर्मी और याजक सच्चा भाईचारा महसूस करते हों, हर दिन प्रेरित देखभाल के हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हों, क्योंकि सभी ने बपतिस्मा प्राप्त की है। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित परम धर्म पीठे विभाग पर एक संक्षिप्त जानकारी सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्या प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका ताक झांक। लेखिका है दुर्गेश नंदिनी चौधरी। श्रोताओं, बड़े शहरों में लोगों के लिए रहने की जगह की कमी होती जा रही है। इसे पूरा करने के लिए अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स बनते जा रहे हैं। यहाँ रहने के तौर तरीके एकल घरों में रहने के तौर तरीकों से एकदम हटकर होते हैं। फ्लैट्स में रहने वाले पड़ोसी सुख दुख में आपका साथ देते हैं, आपकी कुछ छोटी मोटी जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं। पर यह भी देखने को मिलता है कि कुछ पड़ोसी जरूरत से ज्यादा ताक झांक करना शुरू कर देते हैं। आप कब और किसके साथ बाहर जाते हैं, कब लौटते हैं, क्या पहनते हैं, वगैरह वगैरह। जरूरत से ज्यादा ताक झांक करने वाले पड़ोसी न सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन पर दखल देते हैं, बल्कि उनके कारण आपको कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में उनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है, और इनसे निपटने का कारगर तरीका है उन्हें नज़रअंदाज करना। पर अगर वे कठिनाई में हैं और आप उन्हें मदद कर देते हैं, तो आपके प्रति उनकी नकारात्मक सोच और आपके प्रति उनका पूर्वाग्रह समाप्त हो जाएगा। अपने पड़ोसी की आलोचनाओं के डर से भले काम करना कभी न छोड़ें, आपका व्यवहार उन्हें भी बदल देगा। तो आइए सुनते हैं दुर्गेश नंदिनी चौधरी की लिखी नाटिका ताक झांक।
1: अरे इतनी रात गए, ये गाड़ी की आवाज़ आ रही है, कौन आया होगा, देखती हूँ। हे भगवान, इतनी रात में ये लड़की कहाँ से आ रही है। अजी देखिए तो, अरे सुन रहे हैं, स्वरा अकेली सज धज कर कहाँ से आ रही है इतनी रात में। कोई डर नहीं, कैसा जमाना चल रहा है, हैं? और कपड़े तो देखो कैसे पहने, ये सभ्य घराने की पहचान है। अरे सुन रहे हो, क्या घोड़े बेच के सो रहे हो, हमारी पड़ोसन है भाई।
2: अरे भाई सुन रहा हूँ, इतनी रात तक जाग कर लोगों के घरों में ताकना झांकना बंद करो। अजी गई होगी शादी पार्टी में, जमाना बदल गया है। फिर उसका काम ही ऐसा है जिसमें देर सवेर तो हो ही जाती है। भली लड़की है, सबकी जरूरत पड़ने पर मदद भी करती है, बड़े बड़े लोगों से पहचान है उसकी, तुम्हें क्या पता। बस अपने मन से अपनी राय पेश कर दी।
1: आए हाय, बड़े आए पैरवी करने वाले हैं। होने दो, सुबह कमला जी की किरायेदार है, पता कर लूंगी सब, तुमसे तो कहना ही बेकार है।
2: अच्छा ठीक है देवी जी, अब सो भी जाओ और मुझे मत जगाओ प्लीज। अरे भाई सुनती हो, कोई आया है, डोरबेल बजी है। अरे भाई जरा देखो कौन है वहाँ पे।
1: आप ही देखो, मुझे नींद आ रही है जी। वैसे भी रात में उस कलमुही की वजह से मेरी नींद खराब हो गई, मैं नहीं उठ सकती।
2: चलो ठीक है, मैं ही देखता हूँ। ठीक है भाई। अरे बेटा स्वरा, इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना, और तुम रात में भी लेट आई थी।
3: जी दादाजी, वो मेरा शो था ना, आप थोड़ा जल्दी चलिए ना, कमला आंटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मैंने एम्बुलेंस तो बुला ली है, लेकिन वो अकेली है ना, मेरे साथ आप भी हॉस्पिटल तक चलेंगे तो अच्छा रहेगा।
2: तो ठीक कह रही हो बेटा, चलो चलो जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। अरे भाग्यवान उठो, कमला जी की तबीयत ज्यादा खराब है भाई।
3: डॉक्टर साहब क्या हो गया इन्हें, इतनी बेचैनी क्यों है इन्हें, पसीना पसीना हो रही है, देखिए ना आप।
4: स्वरा घबराओ मत, एडमिट करके चेकअप करते हैं, पता चल जाएगा। बेटा अच्छा हुआ तुमने लेट नहीं किया, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा।
2: घबराओ मत बेटा, मैं कमला जी के बेटे बहू को इन्फॉर्म करता हूँ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो देखो डॉक्टर साहब आ रहे हैं।
3: क्या हुआ डॉक्टर अंकल, क्या हुआ।
4: हार्ट अटैक आया था स्वरा, सर्जरी करना पड़ेगी तुरंत। कौन लेगा जिम्मेदारी, आप कौन है, तुम तो किराए से रहती हो ना, घर का सदस्य कौन है।
2: जी मैं इनका भाई हूँ और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ।
3: हाँ और मैं बेटी की तरह हूँ, खर्चे की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, जो भी बेहतर इलाज हो वो कीजिए, हम जिम्मेदारी लेते हैं।
4: ओके हरी अप सिस्टर।
3: दादाजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कोई फोन आया क्या रवि भैया का।
2: हाँ बेटा, फ्लाइट से दोनों पति पत्नी शाम तक आ जाएंगे, उन्होंने हम पर जिम्मेदारी सौंपी है और पूरा भरोसा किया है। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब कुशल करेंगे। और जब तुम सिस्टर से बात कर रही थी ना, तभी रवि का फोन आया था।
3: हाँ दादाजी, फोन आ रहा है। हेलो, यस, स्वरा स्पीकिंग जी, कब का है? अच्छा, वो तो 2 दिन का था ना, 2 दिन बाद की बुकिंग है। ओके ओके, मैं 10 मिनट से बताती हूँ जी। जी थैंक यू।
2: किसका फोन था बेटी?
3: अरे इवेंट का था, बड़ा प्रोग्राम है, आज ही मीटिंग रखने का बोल रहे हैं। अब आप बताइए, इन्हें मैं अकेले छोड़कर कैसे चली जाऊं? हमने जिम्मेदारी ली है ना दादाजी, मैं मुंह नहीं मोड़ सकती। अब कैंसिल कर देती हूँ, 10 मिनट बाद जवाब देना है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं बेटा, मीटिंग 8 बजे तक रख लो, तब तक रवि और बहू आ जाएंगे, और फिर मैं हूं ना, पांडे जी भी आते होंगे, वे भी कह रहे थे कि फिक्र मत करो, पड़ोसी का धर्म निभाएंगे। अरे तुम उन्हें फोन कर दो और मीटिंग अटेंड कर लो, हम सब संभाल लेंगे, मीटिंग खत्म होते ही आ जाना तुम।
3: थैंक यू दादाजी, थैंक यू।
2: अरे आ गई बेटी, कैसी रही मीटिंग? अच्छी रही होगी।
3: कमला आंटी कैसी हैं? पहले तो ये बताइए, भैया भाभी आए कि नहीं? और वो पांडे अंकल आए थे ना?
2: अरे हाँ मेरी बच्ची, सभी आ गए हैं, तुम चिंता मत करो, कमला जी की सर्जरी हो गई है और अब वो बेहतर हैं।
3: हो, ये हुई ना बात, मुझे प्रोग्राम मिल गया है, मीटिंग सुपर डुपर हिट रही, दादाजी बहुत बड़ा इवेंट है, सफल रहा, अब तो किस्मत चमक जाएगी।
2: अरे वेरी गुड वेरी गुड, तुम इतनी अच्छी बेटी हो तो भगवान तो तुम्हें जरूर सफलता देंगे, अब निश्चिंत हो जाओ और अपने इवेंट की तैयारी में जुट जाओ।
3: हाँ आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बस एक बार कमला आंटी को देख लूं, अभी भी आईसीयू में है ना?
2: हाँ हाँ, तुम कल मिल लेना, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कल शाम तक आईसीयू से बाहर ले आएंगे, और रवि और बहू तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारी वो बहुत तारीफ भी कर रहे थे, पांडे जी भी बोल रहे थे कि स्वरा बहुत भली लड़की है, हमेशा सबकी मदद करती है, बड़ी ही संस्कारी बच्ची है।
3: ओ, अच्छा तो फिर कहाँ है भैया भाभी, मैं अब भी जाकर उनसे मिलती हूँ।
1: आ गए, सब खैरियत तो है? कमला जी कैसी है ये बताइए। अरे जरूर उस कलमुही की वजह से तबीयत बिगड़ी होगी, इतनी रात रात गायब रहती है, जब मन हुआ गायब, पता नहीं कैसा चाल चलन है आजकल की लड़कियों का, हैं? कुछ पता ही नहीं चलता।
2: अरे बंद करो बकवास, अपनी सड़ी गली सोच को तुम लगाम लगाओ, बस बोले ही चली जा रही हो, बगैर सोचे समझे जब पता नहीं है तो कैसे किसी को बदनाम करोगी? अरे वो ना होती तो कमला जी शायद आज हमारे बीच नहीं होती, उस बच्ची की वजह से ही वो जीवित हैं। स्वरा की सूझबूझ और पहचान से समय पर उनका इलाज हो गया, वरना अकेली कमला जी तड़प तड़प कर दम तोड़ देती, उनको दिल का दौरा पड़ा था, समझी? दिल का दौरा, रात में स्वरा उन्हीं के पास सोई थी, सुबह अचानक घबराहट बेचैनी बढ़ी तो उसने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर उसकी पहचान का था, उसने एम्बुलेंस बुलवाई, फिर हम दोनों कमला जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, वो तो समय पर पहुंच गए और सर्जरी हो गई, स्वरा ने भी खर्चे की फिक्र नहीं की, बेटी बनकर पूरी जिम्मेदारी निभाई है। अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी अक्ल पर तो पर्दा पड़ा हुआ है, अरे बख्श दो उसको, बहुत भली लड़की है और इवेंट मैनेजर है, बड़े बड़े प्रोग्राम करवाती है, इस वजह से कभी कभार देर हो जाती है।
1: अजी रुको रुको, बैठो मैं देखती हूँ। अरे स्वरा बेटा, आओ बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमारी कमला जी हमारे बीच में है। मैं भी हॉस्पिटल आती बेटा, पर मेरे घुटनों में कई दिनों से तकलीफ चल रही है। बैठो बेटा, चाय नाश्ता करके जाना।
3: दादी जी, कमला आंटी अब अच्छी है, मैं तो दादाजी से मिलने चली आई थी, इवेंट के लिए दिल्ली जा रही हूँ ना, सोचा उनका आशीर्वाद लेती जाऊँ।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर ईश्वर तुमको सफलता देगा।
3: दिल्ली से आने के बाद दादी जी को डॉक्टर के पास ले चलूंगी, उनके घुटनों का चेकअप करवाना है ना, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है बहुत अच्छे, उनको दिखवाती हूँ।
2: अच्छा, अरे भाई क्यों नहीं, जाओ जाओ तुम, ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी।
1: स्वरा बेटा, आने के बाद मिलना।
3: जरूर मिलूंगी, बाय
1: बाय बाय।
2: हाँ ये हुई ना बात, अब लगता है कि तुम नए जमाने की हो।
0: ताक झांक, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी, इसके कलाकार थे सुधीर तेलंग, समता बोरेकर, किंशुक चौधरी और दुर्गेश नंदनी चौधरी। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत लोक धर्मी परिवार एवं जीवन के लिए गठित परम धर्म पीठ विभाग पर संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। टाइबर नदी के किनारे एक छोटी पहाड़ी पर बसा वैटिकन सिटी न केवल दुनिया का सबसे छोटा देश होने के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि अपने अंदर ख्रिस्ते धर्म के 2000 से अधिक वर्षों पुराने इतिहास संजो कर रखा है, जो ख्रिस्तियों सहित उन सभी लोगों को आकर्षित करता है जो कला, संस्कृति और शांति प्रिय हैं। यहाँ सालों भर तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इसके सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वैटिकन में कई विभाग हैं। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम वैटिकन के लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित परम धर्म पीठ विभाग पर चर्चा करेंगे। हर परिस्थिति, संस्कृति और जगह के पुरुषों एवं महिलाओं को अपनाने की इच्छा ने 2016 में पोप फ्रांसिस को वैटिकन के अंदर एक नया विभाग स्थापित करने हेतु प्रेरित किया, जिसमें लोक धर्मियों के लिए परम धर्म पीठ समिति और परिवार के लिए परम धर्म पीठ समिति को एक साथ जोड़ा गया। पोप फ्रांसिस का कहना था कि इसकी प्रवीणता कई लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी है और यही इससे एक खास विभाग बनाती है। विभाग का नेतृत्व कार्डिनल केविन जोसेफ फरेल की अध्यक्षता में सचिव धर्मदश दारियो जेरवासी और ग्लायसोन दी पाओला साउजा के द्वारा किया जाता है। पोप फ्रांसिस ने अगस्त 2016 में मोतू प्रोप्रियो सेदुला मातिर के साथ विभाग की स्थापना की। इसी के साथ लोक धर्मी परिवार और जीवन से जुड़ी जिम्मेदारियों को एक साथ रखा गया। अपने युवा अनुभाग के साथ संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के आदेश पर लोक धर्मियों के लिए गठित परम धर्म पीठ समिति, जो अब विभाग बन चुका है, 1985 से स्थानीय समितियों के साथ मिलकर विश्व युवा दिवस घोषित करने में शामिल रही है। जून 1988 में पोप ने रोमी परमाध्यक्ष कार्यालय पर प्रेरित संविधान पास्टर बोनस के साथ इसकी जिम्मेदारियों एवं संरचना को बताया। परिवार के लिए परम धर्म पीठ परिषद, जो अब एक विभाग है, परिवार वर्ष के रूप में 1984 से परिवारों की विश्व बैठक के आयोजन के लिए जिम्मेदार रही है, जिसकी शुरुआत रोम में आयोजित पहली बैठक से हुई थी। प्रेरित संविधान प्रेदिकाते एवंजेलियम के अनुसार लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित विभाग लोक धर्मियों की प्रेरिताएं, युवाओं और परिवारों की देखभाल तथा ईश्वर की योजना अनुसार बुजुर्गों और जीवन को बढ़ावा देने एवं बचाने के लिए जिम्मेदार है। यह लोक धर्मियों के काम एवं मिशन को बढ़ावा देता है, चाहे वे अकेले हों या संघ में, चाहे वे कलीसिया के हों या कलीसिया से बाहर। विभाग युवाओं के लिए कलीसिया की चिंता जाहिर करती है और दुनिया की चुनौतियों के बीच उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है। यह पोप की युवा प्रेरिता की पहल को सहयोग करती है और धर्माध्यक्ष सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय युवा संघ और आंदोलन की सेवा करती है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सभा आयोजित करती है। विभाग कलीसिया एवं समाज में महिलाओं और पुरुषों की पहचान तथा मिशन पर कलीसिया के सोच विचार में योगदान देती है। इसके लिए वह उनकी भागीदारी को बढ़ावा देती है, महिलाओं और पुरुषों की विशेषताओं को अहमियत देती और कलीसिया में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। यह बपतिस्मा के आधार पर लोक धर्मियों और पुरोहितों के बीच सहयोग से जुड़े मामलों का अध्ययन करती है, ताकि दोनों में कलीसिया के जीवन और मिशन के लिए उनकी साझा जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता बढ़ाए। इसका काम है स्थानीय कलीसियाओं की जरूरतों के हिसाब से लोक धर्मियों को सौंपी जाने वाली नई प्रेरिताएं एवं कलीसिया के कार्यालय बनाने के बारे में धर्माध्यक्ष सम्मेलन के प्रस्तावों को जांच और मंजूरी देना। विभाग विश्वासियों के समुदाय और कलीसियाई आंदोलनों के जीवन और विकास में मदद करती है। यह कलीसिया के धर्म सिद्धांत के शिक्षाओं के आधार पर विवाह एवं परिवार की प्रेरितिक देखभाल को बढ़ावा देता है। यह कलीसिया और समाज, अर्थव्यवस्था एवं राजनीति में पति पत्नी और परिवारों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय सभा एवं कार्यक्रमों को भी यह विभाग बढ़ावा देता है। सुसमाचार प्रचार एवं संस्कृति तथा शिक्षा के विभाग के साथ मिलकर यह परिवारों में विश्वास को आगे बढ़ाने का काम करती है और माता पिता को अपने दैनिक जीवन में विश्वास में सुदृढ़ जीवन जीने के लिए बढ़ावा देती है। विशेषज्ञों की मदद से यह विवाह एवं परिवार की मुश्किलों के कारणों का अध्ययन एवं खोज करती है। इसका काम तलाकशुदा एवं दोबारा शादी करने वाले जोड़ों और कुछ संस्कृतियों में एक से ज्यादा शादी करने वाले लोगों के लिए प्रेरितिक देखभाल के मॉडल इकट्ठा करने और उसे प्रस्तावित करना है। जिम्मेदारी पूर्वक बच्चे पैदा करने और गर्भधारण से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक मानव जीवन की सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन करती है, जिसमें विकास के अलग अलग चरणों में मानव की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। यह उन संगठनों एवं संघों को बढ़ावा देती है जो परिवारों और लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक जीवन के वरदान का स्वागत करने और उसकी रक्षा करने में मदद करते हैं, खासकर गर्भपात का सहारा लेने से रोकने में। यह अलग अलग धार्मिक विषयों एवं दूसरे संबंधित विज्ञान के साथ बातचीत करके मानव जीवन से जुड़े मुख्य जैव चिकित्सा और कानूनी मुद्दों का अध्ययन करती है। यह विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के साथ सलाह मशविरा करके मानव जीवन और मानव की सच्चाई के बारे में नए सिद्धांत की जांच करती है। अंत में विभाग की सच्ची छवि पोप फ्रांसिस के उस बात में प्रकट होती है, जिसको उन्होंने फरवरी 2023 में विभाग द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कहा था। मैं चाहता हूं कि हम सभी के दिल और दिमाग में कलीसिया का एक सुंदर दृष्टिकोण हो, एक ऐसी कलीसिया जो मिशन के लिए प्रयासरत हो, जहां ताकतें एकजुट हों और हम सुसमाचार प्रचार के लिए एक साथ चलें, एक ऐसी कलीसिया जिसमें हमें जोड़ने वाला बपतिस्मा प्राप्त ख्रिस्ते होना, हमारा यीशु से जुड़ा होना, जहां लोग धर्मी और याजक सच्चा भाईचारा महसूस करते हों, हर दिन प्रेरितिक देखभाल के हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हों, क्योंकि सभी ने बपतिस्मा प्राप्त की है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित परम धर्म पीठे विभाग पर एक संक्षिप्त जानकारी सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्या प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका ताक झांक। लेखिका है दुर्गेश नंदिनी चौधरी। श्रोताओं, बड़े शहरों में लोगों के लिए रहने की जगह की कमी होती जा रही है। इसे पूरा करने के लिए अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स बनते जा रहे हैं। यहाँ रहने के तौर तरीके एकल घरों में रहने के तौर तरीकों से एकदम हटकर होते हैं। फ्लैट्स में रहने वाले पड़ोसी सुख दुख में आपका साथ देते हैं, आपकी कुछ छोटी मोटी जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं। पर यह भी देखने को मिलता है कि कुछ पड़ोसी जरूरत से ज्यादा ताक झांक करना शुरू कर देते हैं। आप कब और किसके साथ बाहर जाते हैं, कब लौटते हैं, क्या पहनते हैं, वगैरह वगैरह। जरूरत से ज्यादा ताक झांक करने वाले पड़ोसी न सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन पर दखल देते हैं, बल्कि उनके कारण आपको कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में उनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है, और इनसे निपटने का कारगर तरीका है उन्हें नजरअंदाज करना। पर अगर वे कठिनाई में हैं और आप उन्हें मदद कर देते हैं, तो आपके प्रति उनकी नकारात्मक सोच और आपके प्रति उनका पूर्वाग्रह समाप्त हो जाएगा। अपने पड़ोसी की आलोचनाओं के डर से भले काम करना कभी न छोड़ें, आपका व्यवहार उन्हें भी बदल देगा। तो आइए सुनते हैं दुर्गेश नंदिनी चौधरी की लिखी नाटिका ताक झांक।
1: अरे इतनी रात गए, ये गाड़ी की आवाज़ आ रही है, कौन आया होगा? देखती हूँ। हे भगवान, इतनी रात में ये लड़की कहाँ से आ रही है? अजी देखिए तो, अरे सुन रहे हैं, स्वरा अकेली सज धज कर कहाँ से आ रही है इतनी रात में? कोई डर नहीं, कैसा जमाना चल रहा है, हैं? और कपड़े तो देखो कैसे पहने, ये सभ्य घराने की पहचान है। अरे सुन रहे हो, क्या घोड़े बेच के सो रहे हो, हमारी पड़ोसन है भाई।
2: अरे भाई सुन रहा हूँ, इतनी रात तक जाग कर लोगों के घरों में ताकना झांकना बंद करो। अजी गई होगी शादी पार्टी में, जमाना बदल गया है। फिर उसका काम ही ऐसा है जिसमें देर सवेर तो हो ही जाती है। भली लड़की है, सबकी जरूरत पड़ने पर मदद भी करती है। बड़े बड़े लोगों से पहचान है उसकी, तुम्हें क्या पता? बस अपने मन से अपनी राय पेश कर दी।
1: आए हाय, बड़े आए पैरवी करने वाले हैं। होने दो, सुबह कमला जी की किरायेदार है, पता कर लूंगी सब, तुमसे तो कहना ही बेकार है।
2: अच्छा ठीक है देवी जी, अब सो भी जाओ और मुझे मत जगाओ प्लीज। अरे भाई सुनती हो, कोई आया है, डोरबेल बजी है। अरे भाई जरा देखो कौन है वहाँ पे।
1: आप ही देखो, मुझे नींद आ रही है जी। वैसे भी रात में उस कलमुही की वजह से मेरी नींद खराब हो गई, मैं नहीं उठ सकती।
2: चलो ठीक है, मैं ही देखता हूँ। ठीक है भाई। अरे बेटा स्वरा, इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? और तुम रात में भी लेट आई थी।
3: जी दादाजी, वो मेरा शो था ना, आप थोड़ा जल्दी चलिए ना, कमला आंटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मैंने एम्बुलेंस तो बुला ली है, लेकिन वो अकेली है ना, मेरे साथ आप भी हॉस्पिटल तक चलेंगे तो अच्छा रहेगा।
2: तो ठीक कह रही हो बेटा, चलो चलो जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। अरे भाग्यवान उठो, कमला जी की तबीयत ज्यादा खराब है भाई।
3: डॉक्टर साहब क्या हो गया इन्हें, इतनी बेचैनी क्यों है इन्हें, पसीना पसीना हो रही, देखिए ना आप।
4: स्वरा घबराओ मत, एडमिट करके चेकअप करते हैं, पता चल जाएगा। बेटा अच्छा हुआ तुमने लेट नहीं किया, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा।
2: घबराओ मत बेटा, मैं कमला जी के बेटे बहू को इन्फॉर्म करता हूँ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो देखो डॉक्टर साहब आ रहे हैं।
3: क्या हुआ डॉक्टर अंकल, क्या हुआ?
4: हार्ट अटैक आया था स्वरा, सर्जरी करना पड़ेगी तुरंत। कौन लेगा जिम्मेदारी, आप कौन है? तुम तो किराए से रहती हो ना, घर का सदस्य कौन है?
2: जी मैं इनका भाई हूँ और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ।
3: हाँ और मैं बेटी की तरह हूँ, खर्चे की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, जो भी बेहतर इलाज हो वो कीजिए, हम जिम्मेदारी लेते हैं।
4: ओके हरी अप सिस्टर।
3: दादाजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कोई फोन आया क्या रवि भैया का?
2: हाँ बेटा, फ्लाइट से दोनों पति पत्नी शाम तक आ जाएंगे, उन्होंने हम पर जिम्मेदारी सौंपी है और पूरा भरोसा किया है। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब कुशल करेंगे। और जब तुम सिस्टर से बात कर रही थी ना, तभी रवि का फोन आया था।
3: हाँ दादाजी, फोन आ रहा है। हेलो, यस, स्वरा स्पीकिंग जी, कब का है? अच्छा, वो तो 2 दिन का था ना, 2 दिन बाद की बुकिंग है। ओके ओके, मैं 10 मिनट से बताती हूँ जी। जी थैंक यू।
2: किसका फोन था बेटी?
3: अरे इवेंट का था, बड़ा प्रोग्राम है, आज ही मीटिंग रखने का बोल रहे हैं। अब आप बताइए, इन्हें मैं अकेले छोड़कर कैसे चली जाऊँ? हमने जिम्मेदारी ली है ना दादाजी, मैं मुंह नहीं मोड़ सकती। अब कैंसिल कर देती हूँ, 10 मिनट बाद जवाब देना है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं बेटा, मीटिंग 8 बजे तक रख लो, तब तक रवि और बहू आ जाएंगे, और फिर मैं हूं ना, पांडे जी भी आते होंगे, वे भी कह रहे थे कि फिक्र मत करो, पड़ोसी का धर्म निभाएंगे। अरे तुम उन्हें फोन कर दो और मीटिंग अटेंड कर लो, हम सब संभाल लेंगे, मीटिंग खत्म होते ही आ जाना तुम।
3: थैंक यू दादाजी, थैंक यू।
2: अरे आ गई बेटी, कैसी रही मीटिंग? अच्छी रही होगी।
3: कमला आंटी कैसी हैं? पहले तो ये बताइए, भैया भाभी आए कि नहीं? और वो पांडे अंकल आए थे ना?
2: अरे हाँ मेरी बच्ची, सभी आ गए हैं, तुम चिंता मत करो, कमला जी की सर्जरी हो गई है और अब वो बेहतर हैं।
3: हो, ये हुई ना बात, मुझे प्रोग्राम मिल गया है, मीटिंग सुपर डुपर हिट रही, दादाजी बहुत बड़ा इवेंट है, सफल रहा, अब तो किस्मत चमक जाएगी।
2: अरे वेरी गुड वेरी गुड, तुम इतनी अच्छी बेटी हो तो भगवान तो तुम्हें जरूर सफलता देंगे, अब निश्चिंत हो जाओ और अपने इवेंट की तैयारी में जुट जाओ।
3: हाँ आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बस एक बार कमला आंटी को देख लूं, अभी भी आईसीयू में है ना?
2: हाँ हाँ, तुम कल मिल लेना, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कल शाम तक आईसीयू से बाहर ले आएंगे, और रवि और बहू तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारी वो बहुत तारीफ भी कर रहे थे, पांडे जी भी बोल रहे थे कि स्वरा बहुत भली लड़की है, हमेशा सबकी मदद करती है, बड़ी ही संस्कारी बच्ची है।
3: ओ, अच्छा तो फिर कहाँ है भैया भाभी, मैं अब भी जाकर उनसे मिलती हूँ।
1: आ गए, सब खैरियत तो है? कमला जी कैसी है ये बताइए। अरे जरूर उस कलमुही की वजह से तबीयत बिगड़ी होगी, इतनी रात रात गायब रहती है, जब मन हुआ गायब, पता नहीं कैसा चाल चलन है आजकल की लड़कियों का, हैं? कुछ पता ही नहीं चलता।
2: अरे बंद करो बकवास, अपनी सड़ी गली सोच को तुम लगाम लगाओ, बस बोले ही चली जा रही हो, बगैर सोचे समझे जब पता नहीं है तो कैसे किसी को बदनाम करोगी? अरे वो ना होती तो कमला जी शायद आज हमारे बीच नहीं होती, उस बच्ची की वजह से ही वो जीवित हैं, स्वरा की सूझबूझ और पहचान से समय पर उनका इलाज हो गया, वरना अकेली कमला जी तड़प तड़प कर दम तोड़ देती, उनको दिल का दौरा पड़ा था, समझी? दिल का दौरा, रात में स्वरा उन्हीं के पास सोई थी, सुबह अचानक घबराहट बेचैनी बढ़ी तो उसने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर उसकी पहचान का था, उसने एम्बुलेंस बुलवाई, फिर हम दोनों कमला जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, वो तो समय पर पहुंच गए और सर्जरी हो गई, स्वरा ने भी खर्चे की फिक्र नहीं की, बेटी बनकर पूरी जिम्मेदारी निभाई है, अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी अक्ल पर तो पर्दा पड़ा हुआ है, अरे बख्श दो उसको, बहुत भली लड़की है और इवेंट मैनेजर है, बड़े बड़े प्रोग्राम करवाती है, इस वजह से कभी कभार देर हो जाती है।
1: अजी रुको रुको, बैठो मैं देखती हूँ। अरे स्वरा बेटा, आओ बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमारी कमला जी हमारे बीच में है, मैं भी हॉस्पिटल आती बेटा, पर मेरे घुटनों में कई दिनों से तकलीफ चल रही है, बैठो बेटा चाय नाश्ता करके जाना।
3: दादी जी, कमला आंटी अब अच्छी है, मैं तो दादाजी से मिलने चली आई थी, इवेंट के लिए दिल्ली जा रही हूँ ना, सोचा उनका आशीर्वाद लेती जाऊँ।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर ईश्वर तुमको सफलता देगा।
3: दिल्ली से आने के बाद दादी जी को डॉक्टर के पास ले चलूंगी, उनके घुटनों का चेकअप करवाना है ना, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है बहुत अच्छे, उनको दिखवाती हूँ।
2: अच्छा, अरे भाई क्यों नहीं, जाओ जाओ तुम, ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी।
1: स्वरा बेटा, आने के बाद मिलना।
3: जरूर मिलूंगी, बाय
1: बाय बाय।
2: हाँ ये हुई ना बात, अब लगता है कि तुम नए जमाने की हो।
0: ताक झांक, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी, इसके कलाकार थे सुधीर तेलंग, समता बोरेकर, किंशुक चौधरी और दुर्गेश नंदनी चौधरी। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है, नमस्कार।